0: और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो।
1: والأرض وضعها للأنام
0: और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवा किए जो आपस में मिलते हैं.
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इनमें दो चश्मे बह रहे हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और इन बागों के अलावा दो बाग और हैं,

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्ज़।

सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, रबीउल अव्वल की 12 और अगस्त की 26 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सदर और वज़ीर आज़म ने अवाम पर जोर दिया है कि वह अपनी जिंदगियों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से रहनुमाई हासिल करें। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ इक्तसादी तालुकात को तजवीराती इक्तसादी शराकतदारी में तब्दील करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया है। पाकिस्तान के निजाम अदल में सालसी मुसालहत के जरिए तनाजात के हल को फरोग देने के लिए इस्लामाबाद में मुफाहमत की एक यादाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा क्रिकेट टेस्ट कल लॉर्ड्स में शुरू होगा। और अब खबरों की तफसील। ईद मिलादुन्नबी आज मुल्क भर में मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। दिन का आगाज वफाकी दारुलहकूमत में 31 और तमाम सूबाई दारुलहकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। आज आम तातील है। फजर की नमाज के बाद उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। दिन की मरकजी तकरीब वफाकी दारुलहकूमत में मुनाकिद होने वाली बैनुल-अक़वामी सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस होगी। तमाम शहरों में मिलाद के जुलूस निकाले जाएंगे, जिनमें उलमा और खतीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सुन्नत पर अमल करने पर जोर देंगे। इस बाबरकत मौके पर गलियों, सड़कों, इमारतों, मस्जिद और घरों को सब्ज झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवान नस्ल पर जोर दिया है कि वह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से रहनुमाई हासिल करें और आला अखलाकी किरदार, सख्त मेहनत और इंसानियत की खिदमत को अपनी जिंदगी का शार बनाएं। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। सदर ने कहा कि हमें माशरे में इंसाफ, मसावात, रवादारी, फिरकावाराना और बैनुल मज़ाहिब आहंगी और इंसानी अजमत को फरोग देना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें आज दरपेश माशी, समाजी और अखलाकी मसाइल पर काबू पाने के लिए अपनी इज्तमाई जिंदगियों को इस्लाम की फ्राहम करदा कामिल रहनुमाई के मुताबिक ढालना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने इक्तसादी तालुकात को बाहमी तौर पर मुफीद तजवीराती इक्तसादी शराकत दारी में तब्दील करने का ख्वाह है। वह इस्लामाबाद में सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद की क्यादत में सऊदी कारोबारी वफ से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान इक्तसादी तआवुन और सरमायाकारी में इजाफे के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वफ़ ने ज़राअत, बुनियादी ढांचे की तरक्की और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी के मौके में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने इन तरजीही शोबों में सऊदी सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम किया और कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान हुकूमत और कारोबारी सतह पर मुश्तरका तआवुन के लिए ये बेहतरीन वक्त है। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए शहजादा मंसूर ने पाकिस्तान के साथ कारोबारी रवावित मजीद मजबूत बनाने में सऊदी हुकूमत और ताजर बिरादरी की मुसलसल दिलचस्पी का अयादा किया। सऊदी वफ पाकिस्तान में क्याम के दौरान मुतादिद आला हुकूमती नुमाइंदों और निजी शोबे से वाबस्ता शख्सियात से मुलाकातें करेगा। पाकिस्तान ने शाम के खिलाफ आयद तमाम पाबंदियां खत्म करने के अमरीकी फैसले का खैर मकदम किया है।
نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ یہ مثبت فیصلہ نہ صرف شام کی معیشت کی بحالی اور ترقی میں مدد دے گا بلکہ خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان شام کی خود مختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتا ہے اور پائیدار امن و خوشحالی کے لیے برادر ملک کے ساتھ دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے نظام عدل میں ثالثی مصالحت کے ذریعے تنازعات کے حل کو فروغ دینے کے لیے او آئی سی ثالثی مرکز اور وزارت قانون و انصاف کے بین الاقوامی مصالحتی اور ثالثی مرکز کے درمیان مفاہمت کی ایک اہم یاداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ مفاہمتی یاداشت پر اسلام آباد میں ایک تقریب میں دستخط کیے گئے جس میں وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ اور او آئی سی ثالثی مرکز کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عمر اے اوزینی موجود تھے۔ مفاہمتی یاداشت کے تحت دونوں ادارے مصالحت اور ثالثی کے ذریعے تنازعات کے خاتمے اور متبادل حل کے شعبوں میں طویل مدتی تعاون کریں گے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پاکستان اور بین الاقوامی شراکت داروں کے درمیان اس نوعیت کا تعاون ثالثی اور تنازعات کے متبادل حل کے شعبوں میں بین الاقوامی روابط کو مزید مضبوط کرے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں ثالثی مصالحت کا دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے افغان طالبان حکومت کے پروپیگنڈے کو بے نقاب کرتے ہوئے اس بین الاقوامی روابط کو مزید مضبوط کرے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں ثالثی مصالحت کا دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے۔

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: हालात चाहे जैसे भी हो, तालीम का सफर रहे जारी, ना पेट्रोल का खर्चा, ना आने जाने की फिक्र। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जहां कहीं भी बैठे किसी भी वक्त अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, CSNIT, एजुकेशन मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दाखिले जारी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.vu.edu.pk विजिट करें या 1288 पर कॉल करें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तालीम कहीं भी BP
2: 101 FM
3: A level with zero tuition fee 100% future Bhagat International College Twin Cities top A level institute built on discipline driven by academic excellence learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi get merit stipends and financial support Bhagat International College does not just teach it builds leaders Admissions open at Burkat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: 101 FM
1: हालात चाहे जैसे भी हो, तालीम का सफर रहे जारी, ना पेट्रोल का खर्चा, ना आने जाने की फिक्र। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जहां कहीं भी बैठे किसी भी वक्त अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, CSNIT, एजुकेशन मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दाखिले जारी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.vu.edu.pk विजिट करें या 1288 पर कॉल करें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तालीम कहीं भी कभी भी
4: आवाज की दुनिया का दोस्त मालूमातों तफरीह का साथी मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान

मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मुल्क भर में मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ इक्तसादी तालुकात को तज़वीराती इक्तसादी शराकतदारी में तब्दील करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया है। टीवी की मायानाज अदाकारा खालदा रियासत की 30वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा क्रिकेट टेस्ट कल लॉर्ड्स में शुरू होगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: हालात चाहे जैसे भी हो, तालीम का सफर रहे जारी, न पेट्रोल का खर्चा, न आने जाने की फिक्र। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जहां कहीं भी बैठे किसी भी वक्त अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, CSNIT, एजुकेशन मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दाखिले जारी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.vu.edu.pk विजिट करें या 1288 पर कॉल करें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तालीम कहीं भी कभी भी।
2: 101 FM।
3: A level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A level institute, built on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of

0: सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: जिथे जिथे FM दी आवाज जा रही है उत्थे उत्थे सारे भैन भरावां ते बजुर्गां दी खिदमत च साइमा दा सलाम ते दुआवां भरा गुलदस्ता भी पहुंचे। सोहणे भैन भराओ, साइमा दी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे वतन दे हर फर्द नूं हर बीमारी ते हर दुख परेशानी तों बचाए ते साडे मुल्क दा हर फर्द प्यारे वतन दी शान ते इज्जत वकार नूं वधाउण दा सबब बणे। आमीन सुम्मा आमीन। भैणां ते भराओ, वतन दी खिदमत मुआशी ते समाजी जिम्मेदारी है ते बिलखसूस बच्चों की बेहतरीन परवरिश वास्ते जरूरी है कि तुसी सेहतमंद होवो, क्योंकि सेहत बिना तुसी किसी भी जिम्मेदारी नूं पूरा नहीं कर सकते। लिहाजा सेहत के मामले च तुसी कदी भी गफलत नहीं करनी ते रब ना करे जे तुसी किसी भी बीमारी नूं महसूस करते हो तो फौरन ही पाकिस्तान के मायनास तबीब हर्बल फिजिशियन जनाब प्रोफेसर सुलेमान साहब नूं आप आके मिलो ते बीमारी की मुकम्मल तशखीस नाल कामयाब इलाज तो इस्तेफादा करो। ते इस वास्ते लिखो साडा फोन नंबर ते एड्रेस, सुलेमान दवाखाना रजिस्टर्ड पुल फ्लाईओवर बिल मुकाबिल मीनारे पाकिस्तान।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रिजवाना महताब से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मुल्क भर में मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ इक्तसादी ताल्लुकात को मुफीद बाहमी तज़वीराती इक्तसादी शराकतदारी में तब्दील करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया है। पाकिस्तान ने शाम के खिलाफ आए तमाम पाबंदियों के खात्मे के अमरीकी फैसले का खैर मकदम किया है। और पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में आज आतिश जदगी के बायस कम अज कम 14 नौमौलूद बच्चे झुलस कर जाँ बहक हो गए। और अब खबरें तफसील के साथ। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मुल्क भर में मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। दिन का आगाज वफाकी दल हुकूमत में 31 और तमाम सूबाई दल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। आज आम तातील है। फजर की नमाज के बाद उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं। दिन की मरकजी तकरीब वफाकी दल हुकूमत में मुनक्किद होने वाली बैनुल अक्वामी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस होगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवान नस्ल पर जोर दिया है कि वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से रहनुमाई हासिल करें और आला इखलाकी किरदार, सख्त मेहनत और इंसानियत की खिदमत को अपनी जिंदगी का शार बनाएं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत पर पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने इक्तसादी ताल्लुकात को बाहमी तौर पर मुफीद तज़वीराती इक्तसादी शराकतदारी में तब्दील करने का ख्वाहां है। वो इस्लामाबाद में सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल मसूद की क्यादत में सऊदी कारोबारी वफद से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान इक्तसादी तआवुन और सरमायाकारी में इजाफे के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वफ्द ने ज़राअत, बुनियादी ढांचे की तरक्की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी के मौके में दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान ने शाम के खिलाफ आए तमाम पाबंदियां खत्म करने के अमरीकी फैसले का खैर मकदम किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि यह मस्बत फैसला न सिर्फ शाम की मईशत की बहाली और तरक्की में मदद देगा बल्कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग में भी मौवन साबित होगा। वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात ने अफगान तालिबान हुकूमत के प्रोपेगंडे को बेनकाब करते हुए उसके तर्जुमान के पाकिस्तान मुखालिफ बयान को गुमराह कुन और मन घड़त करार दिया है। वज़ारत इत्तला'आत और नशरियात की जानिब से हकायक के जांच पड़ताल के मुताबिक तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्ला मुजाहिद ने अफगान मीडिया इदारे अमाश न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में झूठा और बेबुनियाद दावा किया। तालिबान तर्जमान ने यह तासुर देने की कोशिश की कि बदख्शान में होने वाली मुसल्ला झड़पों के दौरान पाक फौज भी वहां मौजूद थी। तहम आजाद जराए की रिपोर्ट से वाजे होता है कि ये झड़पें अफगान तालिबान की गैर नुमाइंदा और जालिमाना हुकूमत के खिलाफ अंदरूनी मुसल्ला जदोजहद का हिस्सा हैं। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में आज आतिश जदगी के बायस कम अज कम 14 नौमौलूद बच्चे झुलस कर जाँ बहक हो गए। इब्तदाई इत्तला'आत के मुताबिक अस्पताल के गायनी वार्ड की तीसरी मंजिल पर आग भड़कने के बायस ये वाकया पेश आया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आतिश जदगी के अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लेते हुए हुकाम को फौरी तहकीकात करने की हिदायत की है। हुकूमत ने आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया है। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी इलामी के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1.11 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है जिसके बाद इसकी नई कीमत 371.80 रुपये फी लीटर हो गई है। इसी तरह पेट्रोल की कीमत में 1.12 रुपये फी लीटर इजाफे के बाद 343.10 रुपये फी लीटर मुकर्रर की गई है। गजा में जबालिया पनागुजीन कैंप पर इसराइली बमबारी से कम अज कम 3 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। طبی ذرائع کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 73,431 ہو گئی ہے. اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل لارڈز میں شروع ہوگا. انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk.
1: ریڈیو پاکستان قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے خصوصی نشریات کے ساتھ عرفان جمیل حاضر ہے. سامعین، آج

तक ऐब मेरे उत्ते पाई पर्दा तैनू तेरी करीमी दा वास्ता जी जिस दे सदके थी सानू तू बख्शना है ओस नूरे कदीमी दा वास्ता जी दिन में

मोहब्बत ने हर मुश्किल को आसान किया, अर्श ने ये खुशखबरी भेजी, जमीन ने ये ऐलान किया। क्या

0: आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मां पर लाखों सलाम, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वजीर आला पंजाब और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमद रसूल ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मते मुस्लिमा को मुबारक।
1: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है वरफाना का जिक्र, कि अल्लाह ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
0: आए नबी सल्लल्लाहु
1: वरफाना का जिक्र, कि अल्लाह ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, और वो उस वक्त भी बुलंद था,

0: आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मां पर लाखों सलाम, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वजीर आला पंजाब और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमदे रसूल ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक।
1: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है वरफाना का जिक्र, कि अल्लाह ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
0: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उस्वाए हसना पर अमल पैरा होकर पंजाब को अमन और सलामती का गहवारा बनाएं। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम। हुकूमत पंजाब।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ए नबी मैंने तुम्हारा ज़िक्र बुलंद कर दिया। और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
1: वो कि जिनके आने से कुफ्र के बादल छट गए, हर सिमत नूर का उजाला हुआ, अम मोहब्बत और बाहमी हम आहंगी का दर्स आम हुआ, वो कि जो सब के लिए सरापा रहमत बन के आए।
2: उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पे लाखों सलाम।
1: वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले दो जहानों के सरदार आ गए हैं।
2: वजीर आला पंजाब और अवाम की तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक, हुकूमत पंजाब।
3: सुनते रहिए FM 101 101 101।
4: अल्लाह भी रसूल का, जन्नत रसूल की और दोज़ख

0: आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मां पर लाखों सलाम, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वजीर आला पंजाब और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमद रसूल ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक।
1: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है वरफाना अल्लाह का जिक्र, कि अल्लाह ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
0: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उस्वाए हसना पर अमल पैरा होकर पंजाब को अमन और सलामती का गहवारा बनाए। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम।

0: आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मां पर लाखों सलाम, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वजीर आला पंजाब और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमदे रसूल ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मते मुस्लिमा को मुबारक।
1: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है वरफाना का जिक्र, कि अल्लाह ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
0: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उस्वाए हसना पर अमल पैरा होकर पंजाब को अमन और सलामती का गहवारा बनाएं। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम।

0: आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मां पर लाखों सलाम, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इस्मे मोहम्मद से उजाला कर दे। वजीर आला पंजाब और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमद रसूल ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक।
1: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है वरफाना अल्लाह का जिक्र, कि अल्लाह ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
0: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उस्वाए हसना पर अमल पैरा होकर पंजाब को अमन और सलामती का गहवारा बनाएं। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम।

0: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है, वरफ़ाना अल्लाह का ज़िक्र, ए नबी मैंने तुम्हारा ज़िक्र बुलंद कर दिया। और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
1: वो कि जिनके आने से कुफ्र के बादल छट गए, हर सिमत नूर का उजाला हुआ, अमन मोहब्बत और बाहमी हम आहंगी का दर्स आम हुआ, वो कि जो सब के लिए सरापा रहमत बन के आए।
2: उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पे लाखों सलाम।
1: वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले दो जहानों के सरदार आ गए हैं।
2: वजीर आला पंजाब और अवाम की तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक, हुकूमत पंजाब।

0: आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मां पर लाखों सलाम, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वजीर आला पंजाब और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमद रसूल ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक।
1: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है वरफाना अल्लाह का जिक्र, कि अल्लाह ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
0: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उस्वाए हसना पर अमल पैरा होकर पंजाब को अमन और सलामती का गहवारा बनाएं। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम। हुकूमत पंजाब।

तक ऐब मेरे उत्ते पाई पर्दा तैनु तेरी करीमी दा वास्ता जी जिस दे सदके थी सानू तू बख्शना है ओस नूरे कदीमी दा वास्ता जी दिन महशर ना

0: आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मां पर लाखों सलाम, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वजीर आला पंजाब और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमद रसूल ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक।
1: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है वरफाना अल्लाह का जिक्र, कि अल्लाह ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
0: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उस्वाए हसना पर अमल पैरा होकर पंजाब को अमन और सलामती का गहवारा बनाए। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम।

0: आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मा पर लाखों सलाम, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इस्मे मोहम्मद से उजाला कर दे। वजीर आला पंजाब और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमद रसूल ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक।
1: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है वरफाना का जिक्र, कि अल्लाह ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
0: आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उस्वाए हसना पर अमल पैरा होकर पंजाब को अमन और सलामती का गहवारा बनाएं। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम। हुकूमत पंजाब।

0: आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मां पर लाखों सलाम, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वजीर आला पंजाब और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमदे रसूल ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक।
1: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है बरकाना का जिक्र, कि अल्लाह ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
0: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उस्वाए हसना पर अमल पैरा होकर पंजाब को अमन और सलामती का गहवारा बनाएं। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम। हुकूमत पंजाब।

0: आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मां पर लाखों सलाम, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इस्मे मोहम्मद से उजाला कर दे। वजीर आला पंजाब और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमद रसूल ईद मीलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक।
1: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है वरफाना का जिक्र, कि अल्लाह ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
0: आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उस्वाए हसना पर अमल पैरा होकर पंजाब को अमन और सलामती का गहवारा बनाएं। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम।

0: आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मां पर लाखों सलाम, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इस्मे मोहम्मद से उजाला कर दे। वजीर आला पंजाब और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमद रसूल ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक।
1: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है वरफाना का जिक्र, कि अल्लाह ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
0: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उस्वाए हसना पर अमल पैरा होकर पंजाब को अमन और सलामती का गहवारा बनाए। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम। हुकूमती पंजाब।

0: आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मां पर लाखों सलाम। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वजीर आला पंजाब और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमद रसूल ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक।
1: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है बरकाना का जिक्र, कि अल्लाह ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
0: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उसवाए हसना पर अमल पैरा होकर पंजाब को अमन और सलामती का गहवारा बनाएं। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम। हुकूमती पंजाब
2: 101 FM

0: आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मां पर लाखों सलाम, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वजीर आला पंजाब और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमदे रसूल ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक।
1: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है वरफा नाला का जिक्र, कि अल्लाह ए नबी मैंने

0: हमारा जिक्र बुलंद कर दिया, और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
1: आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उस्वाए हसना पर अमल पैरा होकर पंजाब को अमन और सलामती का गहवारा बनाए। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम। हुकूमती पंजाब।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मां पर लाखों सलाम, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वजीर आला पंजाब और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमद रसूल ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक।
1: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है वरफअना का जिक्र, कि अल्लाह ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
0: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उस्वाए हसना पर अमल पैरा होकर पंजाब को अमन और सलामती का गहवारा बनाएं। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम। हुकूमत पंजाब।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मा पर लाखों सलाम, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वजीर आला पंजाब और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमद रसूल ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक।
1: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है वरफाना का जिक्र, कि अल्लाह ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
0: आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उस्वाए हसना पर अमल पैरा होकर पंजाब को अमन और सलामती का गहवारा बनाएं। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों दुरूद और सलाम। हुकूमती पंजाब।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मा पर लाखों सलाम, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इस्मे मोहम्मद से उजाला कर दे। वजीर आला पंजाब और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमद रसूल ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक।
1: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है वरफअना लका ज़िक्र, कि अल्लाह ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
0: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उस्वाए हसना पर अमल पैरा होकर पंजाब को अमन और सलामती का गहवारा बनाए। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों दुरूदो सलाम। हुकूमती पंजाब।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मां पर लाखों सलाम, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर

0: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ए नबी मैंने तुम्हारा ज़िक्र बुलंद कर दिया। और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
1: वो कि जिनके आने से कुफ्र के बादल छट गए, हर सिमत नूर का उजाला हुआ, अम मोहब्बत और बाहमी हम आहंगी का दर्स आम हुआ, वो कि जो सब के लिए सरापा रहमत बन के आए।
2: उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत पे लाखों सलाम।
1: वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले दो जहानों के सरदार आ गए हैं।
2: वजीर आला पंजाब और अवाम की तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक, हुकूमत पंजाब।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मां पर लाखों सलाम, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वजीर आला पंजाब और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमद रसूल ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक।
1: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है वरफाना का जिक्र, कि अल्लाह ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
0: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उसवाए हसना पर अमल पैरा होकर पंजाब को अमन और सलामती का गहवारा बनाएं। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम। हुकूमत पंजाब।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: नेस्कैफे बेसमेंट सीजन 5, जागना तो पड़ेगा।

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने उलमाए कराम पर जोर दिया है कि वो मुआशरे में इत्तेहाद, भाईचारे और अमन के फरोग में अपना किरदार अदा करें। आज मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मजहबी जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। पाकिस्तान ने नौजवानों की तरक्की और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के बारे में दौलत मुश्तरका के एजेंडे के लिए अपने पुख्ता आज़म का इरादा किया है। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा क्रिकेट टेस्ट कल लॉर्ड्स में शुरू होगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उलमाए कराम पर जोर दिया है कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीमात और सीरत की रोशनी में मुआशरे में इत्तेहाद, भाईचारे और अमन के फरोग के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने आज इस्लामाबाद में सालाना बैनुल अक्वामी सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कौम की रहनुमाई और लोगों खुसूसन नौजवानों को फिरका वारियत, इंतहा पसंदी और गुमराह कुल नज़रियात से महफूज रखना कराम की अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने उलमाए कराम पर जोर दिया कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का रवादारी, मुकालमे और रहमदिली के पैगाम आम करें और कहा कि नजरियाती इख्तलाफात को बाहमी तकसीम का सबब नहीं बनाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आला इखलाक की रोशनी में नई नस्ल के किरदार और
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मा पर लाखों सलाम, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इस्मे मोहम्मद से उजाला कर दे। वजीर आला पंजाब और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमद रसूल ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक।
1: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है वरफअना का जिक्र, कि अल्लाह ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
0: आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उस्वाए हसना पर अमल पैरा होकर पंजाब को अमन और सलामती का गहवारा बनाएं। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम। हुकूमती पंजाब।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मां पर लाखों सलाम, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वजीर आला पंजाब और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमद रसूल ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक।
1: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है वरफ़ाना अला का जिक्र, कि अल्लाह ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
0: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उस्वाए हसना पर अमल पैरा होकर पंजाब को अमन और सलामती का गहवारा बनाएं। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम। हुकूमत पंजाब।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मा पर लाखों सलाम, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इस्मे मोहम्मद से उजाला कर दे। वजीर आला पंजाब और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमद रसूल ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक।
1: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है वरफाना का जिक्र, कि अल्लाह ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
0: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उस्वाए हसना पर अमल पैरा होकर पंजाब को अमन और सलामती का गहवारा बनाएं। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम। हुकूमती पंजाब।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मा पर लाखों सलाम, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इस्मे मोहम्मद से उजाला कर दे। वजीर आला पंजाब और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमद रसूल ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक।
1: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है।
0: और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमद रसूल ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को

0: मुक्ति का गहवारा बनाएं। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों दुरूद और सलाम। हुकूमती पंजाब।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मां पर लाखों सलाम, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वजीर आला पंजाब और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमद रसूल ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक।
1: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है वरफाना का जिक्र, कि अल्लाह ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
0: आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उस्वाए हसना पर अमल पैरा होकर पंजाब को अमन और सलामती का गहवारा बनाएं। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम। हुकूमत पंजाब।

0: आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। नबी आखिरुज़्ज़मा पर लाखों सलाम, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इस्मे मोहम्मद से उजाला कर दे। वजीर आला पंजाब और अवाम की जानिब से 12 रबीउल अव्वल जश्न आमद रसूल ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक।
1: अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया, मेरी बहुत फेवरेट आयत है वरफाना का जिक्र, कि अल्लाह ए नबी मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, और वो उस वक्त भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा इंशाल्लाह।
0: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उस्वाए हसना पर अमल पैरा होकर पंजाब को अमन और सलामती का गहवारा बनाएं। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आने से रोशन हुए दो जहां। खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम। हुकूमती पंजाब।
2: We'll be back after this short commercial break. Stay with us.
3: Shukriya. Aapne FM 101 tune kiya.

मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

0: मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।
1: आप FM 101 से रिबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

मुअज़्ज़िज़ सामईन, आप FM 101 से ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं।

0: तो वो ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती।
1: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ
0: जब सुबह हुई तो वो लोग एक दूसरे को पुकारने लगे।
1: أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ
0: कि अगर तुमको काटना है तो अपनी खेती पर सवेरे ही जा पहुंचो। तो वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे कि आज यहाँ तुम्हारे पास कोई फकीर ना आने पाए। और कोशिश के साथ सवेरे ही जा पहुंचे गोया खेती पर कादिर हैं।

0: उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और उन पर जिल्लत छा रही होगी, हालांकि पहले उस वक्त सजदे के लिए बुलाए जाते थे जबकि सही और सालिम थे।
1: فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ।
0: तो मुझको इस कलाम के झुठलाने वालों से समझ लेने दो, हम उनको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तरीक से पकड़ेंगे कि उनको खबर भी ना होगी।
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ
0: और मैं उनको मोहलत दिए जाता हूँ, मेरी तदबीर कवी है।

0: कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार ही की इबादत करता हूँ और किसी को उसका शरीक नहीं बनाता।
1: قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا
0: ये भी कह दो कि मैं तुम्हारे हक में नुकसान और नफे का कुछ इख्तियार नहीं रखता।